गावन तुदनो पंडत पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पायाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावे खान गाव। गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वड़े आई। जो

सोई थी सी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबने त्याया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़या।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

जिन आप सुवारी। सेवकन को शैव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ।

आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूढ़ उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताकौ कर्पाहन अनुमानत, महामूढ़ काश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नेहर हो, ताके ताप तनक मो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो का।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने।

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तगा वहो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन

जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचाए, तिसका हुए उधारो। यह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म।

मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पाए होई। तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कह जम के तूत नाए तेरा छड जाहे, पहु जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पर।

0: दारू दिता जाए जिदे करके रोग चला जाए। जदो कोई रोग चला जाता बंदा कहिंदा सुकून मिल गया। जदो रोग चले जाणगे तेरे तन के शरीर विच सुख महसूस करेगा। ओ सुख केवल नाम है, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। तन तन होशियार जाने कोई जन, कोई विरला जानदा। तन भी खाक हो जाना है ते तन भी खाक हो जाना है।
1: रोग गवाह है अपना, नानक वैद सदाए।
0: श्री भगवान कहते असल में वैद हो पहला अपना रोग गवावे ता वो वैद सदा सकता है। जे पहला ही रोगी है तो वह वैद नहीं है जे।
1: पौड़ी
0: गुरु नानक महाराज जी अपार कृपा कर देने।
1: ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया
0: सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण सिख ना ब्रह्मे दा पुजारी है, ना शिव दा पुजारी है, ते ना विष्णु दा पुजारी है। गुरु नानक महाराज कहिंदे ब्रह्मा विष्णु महेश देवते ये किन्ने पैदा किते ने? गुरु नानक सतगुरु महाराज कह रहे ने ये निरंकार दे पैदा किते होए ने। ते गुरु दा सेवक फिर देवी देवत्यां दा पुजारी नहीं है, वो केवल पुजारी है शब्द दा, वो शब्द नू ग्रहण करदा है। तां महाराज कहिंदे जिहड़ा करता है ना वो सिख करते नाल जुड़दा है। तुसी रोज पढ़ते हो करता पुरख, वह पुरख है, वह करन वाला है। तो जिहड़ा करन वाला है आपां उहदे कोल जावांगे कि जिहड़े कीते उहदियां बणाईआं होईआं चीजां ने सिख उहदे कोल जावेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस करके महाराज कहिंदे ने ये देवते जिहड़े ने महाराज निरंकार नहीं बनाए हैं।
1: ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया,
0: मेरे वाहेगुरु जी ने ब्रह्म देवते नु दे चार वेद दिते, ओदी पूजा विच लग गया। ते असी शब्द नु छड के ते बाहरली पूजा विच लग गए। तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए, करनी पुंगू जेर लै घट अंतर पूजा होए। पूजा की चे नाम त्याई है, डण नाम है पूजना होए। महाराज कहिंदे संसार दे लोक बारली पूजा विच लग गए हन।
1: दस अवतारी राम राजा आया,
0: दस अवतारा विचों महाराज कहिंदे ने विष्णु दा अवतार राम जी आ गए ने। फिर उन्हां नूं भाव उस पासे दैंता वाले तोर देना कीता।
1: दैता मारे ताए हुक्म सबाया,
0: हुक्म मुताबक ता ता के दौड़ दौड़ के दैंता

वो चरणंग नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत ना माया, दया करनं दुख हरनं

कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग सूही महला पहला चौपदे घर पहला भांडा धोए बैस धूप देवहो तौ दूधै कौ जावहो दूध कर्म पुन सुरत समायण होए निराश जमावहो। वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो गुरु रूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु चरणा की हाजरी भर के गुरुदेव जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरां ने कृपा कीती है अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके अज दे इलाही दरगाही मुखवाक बख्शिश कीते हन जो सूही राग विच्चों तन तन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दतार जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण पावन शब्द सतगुरां दे पावन पवित्र अंग 728 उपर सुभायमान है। अज हुक्म रूप विच सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है दतार गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह बख्शिश ये मेहरामत कीती है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम जो तत् रूप है जो सचदानंद है वह परमेश्वर दा नाम ही शुभ कर्म है। वो नाम जो हिरदे रूपी बर्तन अंदर भांडे अंदर विराजदा है वाहिगुरु की जुगत दे नाल गुरु जुगत दे नाल उसनों मथिया जांदा है। जदों निर्मल बर्तन निर्मल मन दे नाल शुभ कर्मा रूपी दुध दे राही उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं आराध्या जांदा है। शुभ कर्मां दा दुध सुरत दे विच उस परमात्मा परमेश्वर दा मथन कीता जांदा है। वाहिगुरु की कृपा दे नाल वो नाम रूपी तत् प्राप्त हुंदा है। इस सतगुरां ने गुरदेव पिता महाराज ने परमेश्वर की प्राप्ति की जुगत इस पावन पवित्र शब्द विच दर्शाई है। गुरु कृपा करे सबना नू दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजन जी समूह संगत का धन्यवाद। आओ प्यार सहित अमृत बाणी श्री सुखमनी साहब जी के पाठ नाल आपां हुण जुड़ना है। फुल्लां चुक्कां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक

हरै। प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै। प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभु कै सिमरन भौ न व्यापै। प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभु कै सिमरन साध कै संग। सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद। प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जिन आप सिमराई, नानक ताकै लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मलिता, प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिम

पावे जन को एस लोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल, पूजिस नाही हर हरे नानक नाम अमूल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया। अनेक प्रकार किए बहु जितना, पुण्य दान हमें बहु रतना। शरीर कटाए हमें कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपि सर थीवे। अग्न मारे हुमत प्राण, कनिकसव है वर भूमदान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, ताव पी हमें मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही। मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्भ गुमान न मन ते हुट्टे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही का बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे। जल तो वै बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतद बहमूच। बहुत सियान पजम का भव व्यापै, अनिक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अग्नि बुझै, कूट उपाव दरगह नहीं सिजै। झूठ सनाही उपयाल, मुहि व्यापै माया जाल। अवर करतु सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिन्ने मानै। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए। चार पदार्थ जिको मांगै, साजना की सेवा लागै।

मैं चूरै जी को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधानु सा समझा का मिटै अभिमानु आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उचा जाका मन हुई सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पिख है सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेरो नाओ नितावे कौ नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मानु सगल कटा कौ देव दानु कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान आपे अपन संगा प्रभ राते तुमरे उस्त तुम ते हुए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जापु निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जा सुन रसन बकानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार यानिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया के गुण चीत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पयाव पर साख सैन मुख पयाव बैठ कौ दैन एव निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद आरु पर सुख बसै सुत प्राथमित बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त भाव करनी तरसना तिसे त्यागवर संगरचना से दोग मुडंद व्यापे नानक काढ़ ले हो प्रव्यापे आदंत जो रख नहार तिस्यो प्रीत न करे गुवार जाकी सेवा नव निट पावे तासे मूढ़ा मन नहीं लावे जूठा गुरु सदा हजूरे ताकू अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मानु तिसे बिसारे मुग्ध जानु सदा सदै भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौडी संगरचै सा चोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छूट जाए तिसका श्रम करै संग साहि तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत पशु संग होए अंधकूप मह पतित बिकराल नानक काट लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लूक पचारा करे दिन रात बाहर पे गंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान सुनानु अंतर व्यापै लूप सुवान अंतर गुण बार तन स्वाहा गल पात्र कैसी तरह था जाके अंतर बसे प्रभ्याप नानक ते जन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहले होड़ निभावै कहां बुझारत बुझै डोरा निष्कहिए तू समझै पूरा कहा विष्ण पद गावै गुंग जतन करै ताओ भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआवै न चीत जो वैराई तासु प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोहु झूठ विकार महा लोभ त्रोहु आहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास
तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कंडेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, उचे ते उचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दा सदा कुर्बानी। शलोक देन हार प्रभ छोड़ के लागे अनुसुआए, नानक कहू न सी जई बिन नावे पत जाए। अष्टपदी दस बस्तूले।

ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमिठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोग नानक सिन पाया। गंध सब अपनी देरास, खात पीत बरतैन दुलास। अपनी मान कच बहुर सावले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीता भी खोवे, बहुर उसका विश्वास न हुए। जिसकी वस्तु सिया गै रख है, प्रभु की आज्ञा मन है मत है। उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक पात माया के हित, सर पर होवत जान अनित। बिर की छाया सो रंग लावे, वो बिन सैव मन पुछतावे। जो दिशे सो चलन हार, लपट रहो ते अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेहि, ताको हाथ न आवे के। मानो हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानका भले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या हों मैं ममता माया। मिथ्या राजोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती सुबस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता। मिथ्या ध्रुव मुह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को ही रहे। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन सुवाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन्नी पर उपकार, मिथ्या वासलित विकार। बिन बूझे मिथ्या सफे सफल दे, नानक हर हर नाम ले। बिरथी सागत की यार जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तने अंध, मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाये, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाऊ। नानक ताकै बल बल जाओ, रहत अवर कछवर कमावत। मनि प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु प्रवीन। बाहर भेद न काहू भीन, अवर उपदेशय आप न करै। आवत जावत जन मै मरै, इसका अंतर बस है निरंकार। तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पानी तिन प्रभ जाता। नानक कुंजन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने। अपना किया आपे माने, आपे आप आप करत नबेरा। किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। उपाव सियान सगल ते रहत, सब कर जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, मिनस जाए अहंग मेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे। ये प्रसाद सुगंधत धन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। ये प्रसाद वसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मने अंदर। ये प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। ये प्रसाद रंग रस भोग, नान सदा त्याय त्यावन जोग। ये प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कतवर लुभावे। ये प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को मान, मुक्ता को जस रसन बकाने। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दर कै मान पावे, नानक पत सेती कर जावे। जे प्रसाद अरु कंचन देही, लिव लाओ तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तिरौला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता कै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। ये प्रसाद अशुभ हस्त सुवारी, मन तिस प्रभु कौ कबू न बिसारी। ये प्रसाद बाग मिलक तना, राख प्रोय प्रवे अपने मना।
जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा रूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पतरै गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सिवराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया आपू कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगै हरनाथ नानक इनकै कछु नहात सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुन मिता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथाष्टपदी साधक संग मुख उजल होत सा संग मर सगली खोत साधक संग मिटै बिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभु नीरा सा संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा वरनै कौन प्राणी नानक साधक शोभा परमाए समानी साधक संग गुचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बसपंचा साध संग अमृत रसपुंचा साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतहुं तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग न भीगा पैर साधक संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होताप साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हूं तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गुचर लै साधु कै संग अजर सह साध के संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग श्रव थान गम नानक साध कै संग सफल जनामु साध कै संग नहीं कचकालु दर्शन भेटत होत निहालु साध के संग कलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रित बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै प्रमीटा साधु कै संग घट घट डिठा
साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुन है तेता बखियाने साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै कस बिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान जैसे राज रंग को लाग्य तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसुदा को खुद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पाव कै सह सुभाऊ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृश्यमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कु प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी ने कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी आंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और तारै जो अंतर नाम सर्व मैं पिखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानको पर सगल निस्तार अष्टपति मिथ्या नाही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शो पर त्र रूप न पिखै नेत्र साधक टैल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरै मन की वासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परसु वैसन सो जी सुपर सुप्रसन्न बिशन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तने अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावै नानको वैष्णु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग
सगल त्याग गए दुष्ट का संग मन ते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सासन पापा मलख हुए तिस भगवती की मत उत्तम हुए। भगवंत की टहल करे नित नीत मंत निरपे बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नामा तो महसूद है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के अवधे जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे। वेद प्राण सिमृत बूझे मूल सुखम मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्प को ज्ञान जो वर्णा वह जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत हुए साधु संग पावे जन को कर कृपांतर उतार पास प्रेत मुग्ध पाथर को तार सर्व रोग का उकत नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काउ जुगत की तय न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सतराम दास हो आत्म राम तिसने त्रि आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संगा तुम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरक तैसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताई साई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा तिन्नाओ आपे करण करावन जोग प्रभाव है सोई पुन होग पसरे आप तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवत नाम त्या वह नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर गर्व को ही रह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिर सूर नखियतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच सब ते नीरे सबूते दूर नानका बलिपतरिया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जी वह मरे कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही काहे कई कोट काले तक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तेरा के नानक सब कुछ प्रभ कह हाथी कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभु को खोजंती आत्म में पार ब्रह्म लहंती कई कोट दर्शन प्रभु प्रत्यास तिनको मिल्यो प्रभु विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुख प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा की कंकार कई कोट कीने बपात
प्रभ ते हुए ब्रह्मा समाता कंत न जाने कोय अपे अब नानक पुरब सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई गुण नाम रस पीवे अमर भय सत्सद ही जीवे कई गोड नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार नै जल तल मही अल सोयस्पदी करण करावन करण जोग जो तिस भावे सोई रोग किन में थाप तापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मै रहा समाई प्रभावे मानुकत पावे प्रभावे तम पात्र त्रावे प्रभावे बिन शास्त्र राखे प्रभावे ता हर गुण पाके प्रभावे ता पथ सुधारे आप करे अपन विचारे दुहा श्रिया काप स्वामी के लैबिक से अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर नायावे कहो मानुकते क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किच ले जो तिस पावे सोई करे अन जानत विख्या मै रचै जे जानत आपन आप बचै परमे भूला दै दिस्तावे निमक माय चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत ला दे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजा ना मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा का दिस कछु न आवे तिस तत्काल दा दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इसका बलना ही सहात करन करावन सर्व कुनाथ अज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुंथियो कब ऊच नीच में बसै कबू सोग हरख रंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू उबकाश पयार कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबू नृत करै भोपात कबू सोए रह दिन रात कबू माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू होए वह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू फकीरत में आवे कबू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे विख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवै नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू सात संगत पावे सुस्तान ते बौर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रगास सुस्तान का नहीं विनाश मन तन आवृत्ति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जिन मरे भोजन परमावे धन धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक किया मुक्ता गै सुख पावे धनवंता हुए कर गर्भावे तिन समान का संग न जावे बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करया हो तारी श्रम पावे सगले बिरतारी अनिक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दर गय को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछोए तब इसको सुख ना ही कोए जब ये जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए
प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक छूटै सहस कटे लख उठ तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग विख्या के करे नेत्र उतावे खप कमरे बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ वृथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख हुए बिडभागी किसे प्राप्त हुए करन करावन आपे आप सदा सुदा नानक कर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आपा प्रभ सोए जो किछ किन सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देखै करै विवेक अपहि कपै अनेक मरण बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछु उसकौ करने हार उस ते फिन कहो किछु होए थान थनंतरि कै सोए अपने चलताप करने हार कौत कर रंग आपार मन मैं अमन अपने माई नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने बख्यानी सच सच सत सब किन्ना कूट मदे किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप व सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे कुरकै न कोई संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जोन लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाउ को नाहि नान संत भावै थाउ भीगत पाए संत का निंदक मात ताई संत का निंदक टिक न पाई संत का निंदक मा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखी आर दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सुदा विजोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत भावै तो उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित्र संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म है मरै संत की दुख न सुख ते टरै संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावै ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुँचै संत काए दुखी को ध्यान परमाइयै संत का दुखी जड़ पाइय संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यों सास बिना मृतक की लोका ज्यों सास बिना मृतक की लोता संत के दुखी को जड़ के संत के दुखी की जड़ किच नाहि अपन बीजा पे ही काहे संत के दुखी को वर्ण रखन हार नान संत भावै तां लै उबार संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यो बुआड़ तिलके तमाहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो दिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरै न जीवाई है संत के दुखी की पूजै न आसा संत का दुखी उठ चलै निराशा संत कै दुख न तृष्टै कोई जैसा भावै तैसा कोई होए पै कृत न मिटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसक्यो करने हार सुदा सुदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तुत करो दिन रात सत्याभू सास गिरा सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेलाप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसन कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक
तजहु सियानब सुरजनहु सिमरो हर हर राय। एकास हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए पदी। मानु की टेक वृथि सब जान देवन को एक कै भगवान जिसकै दिए रह अघाय। बहुन तृष्ण लगे आए मारे रखे को आप। मानु कै किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूसु होए तिसका नाम रखंठ पुरोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई। मन में कर निरंकार कर मन मेरी सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग सासंग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकू जल मत्था। बटभागी ते जन जग माही सदा सुधार के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार उसे तनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने तुझ की उसो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया नानक जिन निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझय। सास संग हर हर जस रहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत। आंदिर कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जी जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दूख। जिसको हर प्रमंच त्यावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरे। जैसा सत ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तब सब उजिया। जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई असूल। न किस जन्मे न किस मरे अपन चल ताप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट वाग्याकारी तारी सब दृष्ट। आपे आप सगल में आप अनेक जुग त्रिताप उताप। अविनाशी नाही किस खंड तारन तारे हो ब्रह्मांड। अलख भेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे में लय कृपाल गुर का सब जपै निहाल। उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करै बिटभागै। नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किच करे सुप्रभ कै रंग सदा सुदा बसै हर संग। सह सुभाय होवै सोए करने हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना। जैसा साथ ऐसा दृष्टाना जिस ते उपजी तिस माय समाय। सुख निदान नूं बने आए।

तहार अवर पाप सब मीत अवर अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मल्लाए मन बंचत नानक फल पाए सांगना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटाम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस्वस्ति रथ सुवारी झूठा डम झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पुछदाना गुर की मत ले यानी भगत बिना वो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माही जन जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कैत रहत गत पावो सार पूछत हर को नाओ सह सुभाय नानु गुन गाओ तिर त्रस मैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल हुए चिंत बसै सुख नाल सास ग्रास स्वर नाम संभाल चाठ सियान सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी सच करो विहार यहाँ सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख नानक जाके मस्त लेख एको जाप एको साला एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हराप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भय करात प्राचित गए मंथन अंतर एक प्रभ्राता गुर प्रसाद नानक के जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाई नानक की प्रभेन्ती अपनी भक्ति लाइष्ट पदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावू सास सास प्रभु तुम्हें त्यावू चरण कमल सु लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एक ओटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या सेजन तृप्ताने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाहो साध कह सांग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिवलाग बड़भागी जपिया प्रभु सोए नानक नामरते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नु सदा निहाल बंदर काड मुख जन भया जन बंधु प्रम गया इचपुनी श्रद्धा सपूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जी काल न पाने सो क्यों बिसरै जी किया जाने सो क्यों बिसरै जन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया सो क्यों बिसरै जी अगन मेरा कह गुर प्रसाद को बिरला लाकै सो क्यों बिसरै जी बिकते काट है जन्म जन्म का टूटा गाड है गुरपुर है तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक चिंत्याया सा जिन संत करो हे काम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर प्रभ सो सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपाओ भगत पाए तरी है संसार बिन भगति तन हो सी चारु सर्व कल्याण सुख निध नाम मूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुखा हो तनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतरी सुहाओ नेत्रोपेक दर सुख हुए मन बिकसै सा चरण धोए भग जना कै मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमाया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु बख्शन दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदिगुरु कारण करतार भग जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत न हम निर्गुणया नीचे जान नानक तुमरी सन पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम करके गुण गाय अनक राज भोग वढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई भो भोजन का पुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत्र साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सारगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जापोष्टपदी जब अकार कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क सो कह किसे व्यापत जब अपना पापार ब्रह्म तब वो का सोवत परमु

आपन खेला वर तीजा नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी। जब एक कह हरग म पारू तब नरक सुर को कौन उतारू। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडार कवन कत डरे। अपन चल तब करने हार नानक ठाकुर गम अपार। अविनाशी सुखा पनासन तय जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किसोए। जब अभिगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। आपन आप आपिय चर जाओ नानक आपन रूप आपिय पर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीश। जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे तह किसे भूकवन तृप्तावे। करण करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी सुबापन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे परवीन तय वेद कतिब कहा कोचीन। जब अपने आप पुर तार है तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊंचापन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा। बिस्मन बिस्म भय बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद। नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अचीत पे सुमाया। उहां किसे व्याप्त माया पुष्कुआ पया देश क्यों गुण का नाही प्रवेश। जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुन न हारा। बहु बेअंत उचते उचा नानका पुष्कुआ पै पहुंचा। जिया ब्रचो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नु विस्तार। पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत। आल जल माया जंजाल हों मैं वो परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान। अपन के लाभ कर देखे किल संकुच है तो नानक कह। जय अभिगत भगत है आप जय पसर पासार संत प्रताप। दू पा काया पे तनी उनकी शोभा अनु बनी। आपे कौत करे आनंद चूज आपे रस भोग निरजोग। जिस पावे तिस अपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथाह गंते अतुले ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बुले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। आप कहे का विस्तार जात इस पावे तां श्रेष्ठ उपाय। आपने भाणे ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए। अपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभ जीवा बुझाए। सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता। नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंत्र सबता के हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे। सो मुआ जिस मनो विसारे तिस तजबर कहा को जाए। सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ। अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत पार। नानक दास दा बलिहार पूरन पूरहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल जीन बोपात जो जो रचियो सुति सहते आत। जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक जानिया। जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसन वृत्ति जाए। सेवक को सेवा बनियाए हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार जा कै मन वसिया निरंकार। बंधन तोर पय निर्वैर अन दिन पूजय गुर के पैर।
लोक सुखी परलोक सुहेले नानक हर प्रव्यापै मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचनर के गुण गाओ प्राण तरन कह है सुहाव वाट पैर पर भिखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पलत दुएलिहु सुआ राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिसाज परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करहु व्यापारी इधर कहनी बहके तुम्हारी एका टिक रखो मन वाहे नानक बहुर नया वह जाहे किस्ते दूर कहा को जाए उबरै राखन हार त्याए निर्भौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोय न पहुंचन हार श्री उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताकी कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदृत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहूत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संगंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगरी एक स्कट माहे अनिक रंग नाना दृष्टाहे नौ निदमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समादन हतै नाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसाब दिखाई नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट ब्याप रहा भगवंत तरन बाहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पावन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दै दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्यर सूर नखियत्र महेक पाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खिल खेल बोल न पाइये गुनह अमूल सर्व ज्योत

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपाए चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जानै निसाण गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को विखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए भाखिया भाउ अपार आखै मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलण बोलियै जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई तवात ना पुछै के कीता अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत धवल आकाश सुणै दीपलो पाताल सुणै पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास सुणै ईसर बर्मा इंद सुणै मुख साला हनुमंद सुणै जोग जुगत तन भेद सुणै सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास सुणै सत संतोख ज्ञान सुणै अठ साठ का इशनान सुणै पढ़ पढ़ पावै मान सुणै लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास
सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पातशाह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ हुवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछुताए, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों परगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावे मुख द्वार, मन परवार साधार, मन तरह तारी गुर सिख, मन नानक पावे न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे है दरग है मान, पंचा सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार, तबले ऊपर किता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे ही उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग बखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिय हाथ पैर तन देह, पानी धोतह उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए, भरिय मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग,
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰ ਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੇ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ, ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ। ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, ਅਸੁਲੋ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਰਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕਿਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੈ ਵੇਕਾਰ। ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹੇ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖ ਹੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲੇ ਵਲਾਏ, ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖਹਿ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ, ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿੱਧ, ਆਖਹਿ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ, ਆਖਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਾ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ, ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ।
गावै तुहनो पौण पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरी गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारी गावै ईसर वर्मा देवी सोहन सदा सवारी गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारी गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारे गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावै है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखा है कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना।

मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सद जाति रिद सिद्ध अवरा साद संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेस केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कह पिछै पशुताए तिथै घड़िया सूरत मात मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह ना ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ
अमृत तित ढाल, घड़िए शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी की नेड़ै के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं, छपै छंद त्वा प्रसाद, चक्र चिहन अर बरन, जात अर पात नहन जेहे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे, अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमित ओज केहे जय, कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गण जय, त्रिपवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन त्रिण कहै तो, त्वा सर्व नाम कथै कवन, कर्म नाम ब्रनत सुमत, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाय, नमस्तंग अजाय, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे, नमस्तंग अकर्मंग, नमस्तंग अतर्मंग, नमस्तंग अनामंग, नमस्तंग अतहमंग, नमस्तंग अजीते, नमस्तंग अपीते, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग अटाहे, नमस्तंग अनिले, नमस्तंग अनादे, नमस्तंग अशेदे, नमस्तंग अगादे, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग अपारे, नमस्तंग सो एकै, नमस्तंग अनेकै, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग निरकर्मे, नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निरपिसे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरताते, नमस्तंग निरकाते, नमस्तंग निरतूते, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अलोके, नमस्तंग अशोके, नमस्तंग निरतापे, नमस्तंग अथापे, नमस्तंग तिरमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग अगाहे, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग तिरवर्गे, नमस्तंग असर्गे, नमस्तंग प्रभोगे, नमस्तंग सजोगे, नमस्तंग आरंगे, नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग अगम्ये, नमस्तस्तरम्ये, नमस्तंग जलाशरे, नमस्तंग निराशरे, नमस्तंग अजाते, नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, अदेसंग अदेसे, नमस्तंग अपेसे, नमस्तंग निरतामे, नमस्तंग निर्वामे, नमो सर्व काले, नमो सर्व दयाले, नमो सर्व रूपे, नमो सर्व कूपे, नमो सर्व खापे, नमो सर्व थापे, नमो सर्व काले, नमो सर्व पाले, नमस्तस्त देव, नमस्तंग अपेव, नमस्तंग अजन्मे, नमस्तंग सुबन्मे, नमो सर्व गौने, नमो सर्व पौने, नमो सर्व रंगे, नमो सर्व पंगे, नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तंग अबरने, नमस्तंग अमरने, नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्व तंदे, नमो सत अबंदे, नमस्तंग निरसाके, नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तंग सुहागे, नमो सर्व सोखं, नमो सर्व पोखं, नमो सर्व कर्ता, नमो सर्व हर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्व दयाले, नमो सर्व पाले, चाचरी छंद त्वा प्रसाद, अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है,
अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, आगाह हैं, अमान हैं, निधान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग प्रयात शंद। नमो सर्व माने समस्ती निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पहान पहाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे, प्रपंगी प्रमाथे, समस्ति विभूते, कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमे, अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इशनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र यंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्तं निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा गिरद करता, अधो उर्द अर्धं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अशेदिया पेदिया नामं अकामं, समस्तु पराजी समस्त अस्ततामं, तेरा जोर चाचरी शंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अपेश हैं, पुजंग प्रयात शंद, अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं परमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत परीते, नमो रोख रोखे, नमो शोख शोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व गयानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी, चरपट शांत त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल कर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुवाल शांत त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिशाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जानहि जेह वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेव, तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुर तीन, लोक चौदह के बिखय जग जाप ही जेह जाप, आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार, कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश, अंग राग न रंग जाक है जात पात ना नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकत दायक काम, आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत,
अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र ना जानही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवही वह चित मधुभार छंद तुआ प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु शाहान शाह राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाटे अंड अंड बाटे चाचरी छंद तुआ प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारी अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र पारती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिसय आदिसय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद काथते के अछेज देसै के अभिज भिसै के अगंज करमै के अभंज परमै के अभिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत भरणै के बेभूत करणै के राजंग प्रभाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपाहो अनुपय के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाख व्यैब है के गैबुल गैब है के अपबुल गुना है के शाहन शाह है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र हंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसनल वजू है तमामल रजू है हमेशुल सलामे सलीखत मुदामे गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसुत है बिलंदल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजुअल मैदान है हरीफल अजीम है रजायक जतीन है अनेको तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्व साज है समस्तु सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे सुभंग सर्व भागे सुसर्भा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनूकत स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है
अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अधिक है, अलेख है, अपेक है, अटा है, आगाह है, असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत तुआ प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंगख्याता, सर्वंगज्ञाता, सर्वंगहर्ता, सर्वंगकर्ता, सर्वंगप्राणंग, सर्वंगप्राणंग, सर्वंगकर्मंग, सर्वंगकर्मंग, सर्वंगज्युक्ता, सर्वंगमुक्ता, रसावल शांत तुआ प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न माता न जाता न पाता निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत तुआ प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दहंद है के राजक रहंद है क्रीमुल कुमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलम प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलम अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शंतु प्रसाद गुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम गुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड।

जी अमय दृष्ट शुभ करे हर अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे गुर नाव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ननस सिंह शरण कत जाइय जो जम्बुक गुरास एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पाव प्राण गए सागर मल फुन काम नयाव प्राण जो था कि थिर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मुवे नौका मल कहो काहे चढ़ावाओ मैं नहीं कछ हौ नहीं किश आहे न मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा अमय दृष्ट शुभ कर

अवर निराफल कमा रहाओ। इहो मन ईटी हाथ कराओ, फोन नेत्रो नींद न आवै, रसन नाम जपो तब मथिया, इन बिद अमृत पावहु मन संपट जित।

राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिस न हुए दयाला।

प्रभ अपने कियो, हर चंदौरी चित भ्रम सखिए। मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग न चालती सखिए। अंत तज जावत माया, रस भोगन अत रूप रस माते। इन संग सुख न पाया, धन धन हर साध जन सखिए। नानक जिनी नाम ते आया, जाए बसो वड भागनी सखिए। संता संग समाइए, तह दुख न भूख न रोग व्यापै। चरण कमल लिवलाइए, तह जन्म न मरण आवन जाना। निचल सरणी पाइए, प्रेम बिछोह न मोह व्यापै। नानक हर एक त्याइए, दृष्ट धार मन बेदया प्यारे। रतड़े सहज सुभाई, सेज सुहावी संग मिल प्रीतम। आनंद मंगल गुण गाए, सखी सहेली राम रंग राती। मन तन इच्छ पुजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया। कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवां, घर चौथा

दुख सुख करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन धन अर्पों सब अपना, कवन सुमत।

रहाउ। अनिक जुगत कर बहुत विचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहु नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहिया प्रभु सब मह आपे, हर जप रसना दुख न व्यापे रहाओ। तिखा भूख बहुत तपत व्यापिया, शीतल भय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख न पाया, मन त्रिपताना हर गुण गाया, देह भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा वड

राम महारसलीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भय प्रसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल स्यों लाई है चीता। हौं बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाउ सफल जन्म होवत वड भागी, साध संग राम महलिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमक न विसरो।

मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मह आया। रहाउ भगत वच्छल पै काटन हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतत पावन प्रभ बिरद बेद ले, पतत पावन प्रभ बिरद बेद लिखिया। पार ब्रह्म सो नैनो पिखिया, साध संग प्रगटे नारायण। नानक दास सब दुख पलायन, बिलावल महला पंजवा। कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा। गुण वे अंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे। तू अपरंपर ठाकुर मेरे, रहाओ एक बिन नाही को दूजा। तुम ही जानू अपनी पूजा, आप हु कछु न होवत पाही। जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया। गुण निदान प्रभ तिन ही पाया, बिलावल महला पंजवा। मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया। भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूढ़े। तब तन बिन सजाए बेहाल, रहाओ मन तन मन तने अपना कर थापिया। करन हार एक निमख न जापिया, महा मोह अंधकूप परिया। पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया, वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया। संत संग नानक प्रभ पाया, बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत बंत पपाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज

रहाओ। सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, भय मनोरथ सो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बिदाता। साध संग नानक रंग माणिया, घर आया पूरे गुरियाणिया। बिलावल महला पंजवां, सर्ब निदान पूरन गुरदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खुआर साखत नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साखत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक

रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया। रहा रज रज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहे त्याई, नानक गुरपूरे शरणाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवां, सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार। रहाओ जो जो निंद करे।

महला पंजवा। ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग, पार ब्रह्म तू बक्सिया संतन रस भोग रहाओ।

पूरा सतगुरु सेविया से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवां।

ए बोल करा गौं जो प्रभ जियो दयाल होए तो भगती लागौं लपट रहो मन बासना गुर मिल एह त्यागौं रहाओ।

प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाही सहज समाना पीतरे छोड़िया नह जाय रहाव जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आघानिया गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमूला कीमत कही न जाइए क्या कहे मुख बोला सफल

तुम बख्शनहारे रहाओ, हम अवगुण करह असंख नीत। तुम निर्गुण दाता रे, दासी संगत प्रभु त्याग। ए कर्म हमारे तुम देवो सब किछ दया तार, हम अकृत कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों, नह चित खसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं भाव काटन हारे। कहो नानक शरण दयाल गुर, लेहो मुगद उदारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिय। प्रभ अपना त्याई, जित सेवे सुख हुए कना। मन सोई गाइय,

आओ ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा नितरिया धर तेरिया एक नाम अधारा जो तुम करहो।

मरना नहीं सूझै। सतगुरु सेव हो अपना काहे फिर हो अपागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कैसाई माटी स्यों माटी रली, नांगा उठ जाई। जा कै किए श्रम करै ते बैर विरोधी, अंतकाल भज जाहेगे काहे जलहु क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंदले त्रिभवन सूझया गुर।

गयो त्रिण में रद किता श्रम करते दम आड़ को ते गणित नीता कवन वडाई कह सको बे

अहंग बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध। अहंग बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध। लपट कपट ग्रह विद्या मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में है।

रूप धूप सुगंधता कापर पुगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिर

बिलावलो महला पंजवा बिन साधु जो जीवना तेतो बिरथारी मिलत संग सब भ्रम मिटे गत

इत छडाई मोहिते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एहो मन भया बिनसी अपतारी निंद चिंद पर दुख ना एखिन मह जारी दया मया अर निकट पे नाही दूरारी तन मन शीतल भये अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा पहल करूं तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना भेट देओ गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलहो दयाल निसबासुर मन अनद होत चितवत कृपाल रहाओ जगत उदाहरण।

भाग माया धारी छत्रपत तिन छोडो त्याग रहाउ संतन का दाना रूखा सो सर्व निदान गृह साकत छत्ती प्रकार ते भिखु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन न हुई साकत सिर पौरे समी पहरत पत खोई साकत

दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाय। सब किछ तुम ही ते हुआ आप बणत बनाई, दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप सा संग जी, आप जी वडभागी हो जो प्यार सहित निता प्रति गुरुदेव जी के पावन दरबार विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी के श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी कृपा करन हाजरियां दर ते प्रवान कर लैन। पढ़ी सुनी बाणी का भाव सतगुरु जी समूह परिवारां नूं जीवां नूं बख्शिश करके निहाल करन जी, अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन। आप संगत कृपालू सतगुरु बख्शनी योग ने भुल्लां ना चितारनियां। प्यार सत फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अकाल पुरख ऐसा समुंदर है, सतगुरु दीन दयाल जिवें समुंदर विच रह के मछली अंत नहीं पा सकती, तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत ला। जह जह देखा तै तै तू है, तुझ ते निकसी फूट मारा। इवें ही उस निरंकार दा आकार है। सतगुरु सच्चे पातशाह कह रहे ने, वो हर दम हर पल सानू जीवन वास्ते कुछ ना कुछ बख्शिश करता है। जिहड़े कहंदे ने ना भई रब किथे है, 20-25 सेकंड लई अपनी नोज नू घुट के फड़ लो, पता लग जाएगा सुआस देन वाला भी कोई है। वो साडे विच है, असी ओदे विच। उस तो बगैर कुछ है ही नहीं। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे कोई बोलदा पिया है ना, ओदे विच भी ओही बोलदा है। जे कोई देखदा पिया है ना, ओदे विच भी ओही देखदा है। ओ गल वक्री है, किसी दी कमाई इड्डी महान हो जाए, जह जह देखा तै तै तू है। ते सतगुरु कह रहे ने, फिर वो जिहड़ी अवस्था है, वो जिहड़ी स्टेज है, जा पदवी कह लो जा कमाई कह लो, किसे विरले दी बनदी है। सतगुरु कह रहे ने, ओदे गुणा दी कोई गिनती नहीं, जिदे जिवें साडे अवगणा दी कोई गिनती नहीं, पर ओदे गुण गायन करन नाल अवगणा दा भी नाश हो जांदा है, मिट जांदे ने। सच्चे पातशाह तेरे तो बगैर कुछ भी नहीं, तेरे तो बगैर कोई भी नहीं। असि शरीर का ही मान करी जाते हैं, शरीर नू बॉडी नू अज तक किसी ने नहीं रखिया। ओदी अंश ओदी बख्शिश होई, आत्मा ओदा हिस्सा कह लीए, वो कूच कर जाए ते सब कुछ मिट्टी बन जाता है। महाराज कह रहे ने, मेरे साहेबा तेरे चोज बिडाना, ये सब तेरी लीला है, पर इनू समझदा कोई है नहीं। ते बंदा कुछ होर समझण वास्ते आया सी, पर समझे कुछ होर जाता।

पावन सूरी बच्चे दोने बच्चे सुभाईमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुके हैं जी। सो परिवार नूं हुक्म होया सी कि जातू मेरे वल है ता क्या मां शंदा तू सब कुछ मैनूं सौंपिया जा तेरा बंदा